0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: वेल, वी हैव सीन कि पहले टारगेट सेट कर जब उसे अचीव कर लेते हैं ना हम, तो एक अलग ही किस्म का सुकून, एक अलग किस्म की खुशी मिलती है हमें। पर असली मजा वो नहीं है, वो नशा, एक अलग सा मजा उस सफर में है, उस सफर में जहां हम छोटी छोटी जंग को फतेह करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो सफर अक्सर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी बहुत याद आता है। आई एम श्योर आप भी इस सफर को एंजॉय कर रहे होंगे, सफर गीतों और बातों का, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे पर गाल नहीं कढ़नी।
0: हम मानते नहीं, ढूंढते नहीं, पर हम में से हर एक में लीड करने की, इंस्पायर करने की क्षमता है। चले जिसे भी आप अपना आइडियल मानते हो, वैसे मैं अपनी बात करूं तो आई विश आई कुड बी मे बी अ बिट लाइक डॉक्टर किरण बेदी, द वर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। मन चाहता है वैसा बनना, पर कहीं ना कहीं डर भी लगता है। फिर सोचती हूँ कि वो किसी और प्लैनेट से थोड़े ना आई है, हम में से ही तो एक है। जब इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के बारे में स्ट्रांगली सोचती हूँ, तब उठता है मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम ह्यूमैनिटी के लिए। अभी बातें और भी होंगी, बट पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धारी जाने जाने को जम धारी जग धार

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: गुस्सा हमेशा से हमारा बहुत बड़ा दुश्मन रहा है और कई बार ये इतना बड़ा नुकसान कर जाता है हमारा कि भरपाई नहीं हो पाती। कहते हैं एक बार एक आदमी ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर अपनी ड्रीम कार खरीदी। उस कार को बाय करना वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। घर लेकर आए, चाय पी कर घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं। वेल, अभी बहुत लंबी बात है, पहले एंजॉय करते हैं अगला ट्रैक एंड देन वी विल कंटिन्यू।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। जो अभी हमने बात की उस इंसान के बारे में जिसने गुस्से में आकर अपने बच्चे की एक फिंगर गवा दी, टाइम निकाल पाए तो कभी गौर जरूर करें इस बारे में। और अगर इस इंसिडेंट के बारे में दिमाग के साथ साथ आप दिल से भी सोचेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप फिर कभी भी पेशेंस लूज नहीं करेंगे, खासकर अपने अपनों के साथ। क्योंकि टूटी कार ठीक हो सकती हैं, महंगी चीजें जो डैमेज हो गई हैं दोबारा खरीदी जा सकती हैं, बट ब्रोकन बोन्स एंड हर्ट फीलिंग्स ऑफन कांट। वेल द मॉरल बीइंग दैट थिंक बिफोर यू एक्ट, बी वेरी पेशेंट, बी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी वेरी लविंग।

गुर कै सिख सतगुरु ते आया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरत हर द्वारे। जैसा करे

कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कही है, मिले असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बड़ै बेकारा, बिन बोले क्या करै बिचारा। कहो कबीर शुश

हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कहे कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गुण

जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साखर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर। गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरकी हां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकस संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछे पर, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कह रे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पिसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जौ लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रैलिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सोहागन उर्वार ना पार, पांच नारद कै संग बेदवार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गोंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै। रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै। रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाईऐ, साधु बिन तैसे अवगत जाईऐ। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। घोर बिना

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सगत संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जय।

ज्यों बिखई हेरै परनारी, कौडा डार तेहरै जुआरी। जै जै देखो तै तै रामा, हर के चरण।

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करै निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महा।

कबहू जाए प्याले लोभी जियड़ा थिर ना रहत है चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जे तू देवै अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला सर्ब जोत तेरी पसर रही जै जै देखा तै नर हरी। जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाड़िया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर घट पीतर बसया बाहर काहे नाही तिन की सार करे नित साहेब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सरबरया भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जै देखा तै रया समाए। अंतर सहसा बाहर माया नैनी लग सबाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला जित दर वसै कमन दर कहिया दरा पीतर दर कमन लह। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कह। किन बिद सागर तरिया जीव त्याने मरिया रहाओ। दुख दरवाजा रोह रखवाला आसा अंदेसा दोए पट जड़े।

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन बिद सागर तरिय जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, आराम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत झोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे, गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक अर योगी जंगम पीर पुरश बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा सुंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवै सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावै सच नाम ताड़ी चित लावै। नानक बोलै अमृत बाणी सुन माशिंदरा औदू निशानी, आसा महे निरास वलाए निचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए, दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। आराम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए निचो देवड़े आई। गुर तार तार नहारिया देह भगत पूर्ण वनासी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम